0: का शिक्षक सेवा आयोग का सूचना अधिकारी शिव प्रसाद रेग्मी।
1: शिक्षक सेवा आयोग साल सहमति शिक्षक सेवा आयोग का चित्र प्रदर्शन कर सकते विज्ञापन करूंदा अगड़ी तो मार्गपोस्ट करूर्च जब समय हमारे मार्गपोस्ट करूंगा तब समय शिक्षक सेवा आयोग ने विज्ञापन संबंधी काम कर सकते इसमा अजू को बड़ अवस्था में शिक्षक सेवा आयोग में मार्ग पदाधिकारी रूप में नरक अवस्था होगा तो वर्ष प्रत्येक तह को विज्ञापन होने संभावना न्यून
0: तपाईको जिज्ञासालाई मेटाउँदै हुनुहुन्छ रानीखाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सूचना अधिकारी राम बहादुर केसी। तपाईको पनि कुनै समस्या वा विचार भएमा हामीलाई जुनसुकै बेला तपाईँको आवाजमा रेकर्ड गर्न सकिने हाम्रो आइडिया नम्बर 01-5268-6469 फोन गर्न सक्नुहुनेछ। हामी सुरुकरवाला निकायबाट जवाफ लिनेछौ। साझा खबरमा अब विदेशको खबर। अमेरिका र इरानी सेनाबीच हर्मुज क्षेत्रमा पुनः तनाव बढेको छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युद्ध विराम जारी रहेको

0: diesen Jahr Viertel, das hat gut umgemein. Und hat die Linke gut gemein, wenn die Saal und die Halle gut gemein. Da kümmern wir uns um die. Bei jeder Montan, der Diego, die Moni, die Lora, die Kabine, die Lora, die Kabine, die Lora, die Kabine, die Lora, die Kabine, die Lora, die Kabine, देखो मैं अपेक्स दूरी की तीन महीना दूरी महीना दूरी महीना पांच छठे दिन है लोगों
1: अच्छा ठीक
0: है हाँ सात उधर पता वो देखो मोटा नतीजे दूरी का है दुकानों दादा पांच
1: ढकिया नहीं मुझे पता है ढकिया बिन नतीश उनसे क्या किया उनसे सीखे
0: ठीक है हमारे साथ दोस्त कराते बात
1: नतीजे अबे जानन के हेयर के सीखे कि अबे जाने सिखाई नहीं
0: ना सिखाई ना उन्हें
1: अबे जाने आई के जाने
0: खाली वो ढकिया मता वो हेयर के मैं दिले को हमारे ये तो ठीक है ना बात
1: सदा
0: मोहरा वो सीखा बंदा और अगर नहीं जानो तीन तीन तो जानो
1: तो उस समय तो क्या चीज दी है हम धारण के घर सामान घर एक तल लगे तो दी है ना तो उस समय तो क्या दी है किसी किसी चीज दी है
0: कितना मजा जाता है तो मोरी बताएं तुम और चलिए मैं कुछ ले तुम
1: चलिए
0: हाँ चलिए
1: अपनी जात के अपनी सी
0: काटे बनाए जाओ दूसरे दिन बताओ मैं चलिए तो खुशी
1: हूँ
0: खुशी हूँ चलिए
1: अपने अपने दिन तो जब देखी नहीं तो ठीक

0: doors with him would never be.
1: स्वास्थ्य सेवा प्रतिबद्धता नागरिक स्वास्थ्य प्रति हमारी प्रतिबद्धता करके निर्विक स्वास्थ्य सेवा में सर्वस्वलभ रूप में टिकले यहाँ को स्वास्थ्य सेवा में आवश्यक पलम का कार्य ऐसी कौशल्य अस्पताल बांसगढ़ी में संपर्क करना आर्थिक अनुरोध करा थी
0: अस्पताल से दे देना सेवा
1: चौबीस घंटा डॉक्टर के प्रत्यक्ष निगरानी में उपचार कराते
0: प्रत्येक दिन बिहार 8 बजे से संध्या 6 बजे विशेषज्ञ फिजिशियन डॉक्टर ऐसी प्यार छाती कलेजो नशा मुटु चेक जांच कैदा
1: प्रत्येक दिन नशा तथा निग्रो सर्जरी हाथ जोड़ने तथा जनरल सर्जरी पॉजिटिव सेवा नाक कान घाटी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा चेक जांच करा जाए
0: 24 घंटा डिजिटल एक्सरे वीडियो एक्सरे ईसीजी तथा इको मुटु एक्सरे सेवा उपलब्ध भा सुविधा सम्पन्न ल्याब सेवा उपलब्ध भा प्यारालाइसिस मुख बाँकैना नशा धापैल हाथ गोडा निचल्ना बिरामीहरू फिजियोथेरापी तथा एकुपेजर थेरापी विधि बसे उपचार कैदिना
1: नशा धापैले बिरामी हुन्छन् के बिना प्रेसर फिजियोथेरापी तथा एकुपेजर थेरापी से सफल उपचार गर्दे
0: 24 घंटा एम्बुलेन्स व्यवस्था कैदिना असहाय नागरिक एकल महिला अनाथ बाल बालिका अपाङ्ग ज्येष्ठ नागरिक हुन सेवामा 10% छुटके व्यवस्था कैदिना कौशल्य अस्पताल प्रणाली बाँसगढी शाखा 5 बाँसगढी बर्दिया पुरान पेट्रोल पम्प दक्षिण पाँचर
1: सम्पर्क फोन नम्बर 084400192 हो 084400210 बाँसगढी बर्दिया सँगसँगै फोनको 11 14 नम्बर

नमस्कार नमस्कार बजे को समाचार में आपका पहला ही स्वागत समाचार का मुख्य मुख्य शीर्षक पाकर पारस्परिक नगर पालिका सर्वे तथा हिंसा प्रेम को लागू ईश्वर का कार्यक्रम पर ध्यान परिणाम

सुसर पार्टी के पहाड़ ने अवस्था इस कारण रोकथाम उपाय तथा विपद का समय में देखी सकने जोखिम बारे सहजीकरण करो संबंधित एन तथा कानून एन तथा कार्यविधि को साथ ही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास बारे समेत जानकारी कराने कार्यक्रम में सहभागी विभिन्न समूह में विभाजन करी समूहगत छलफल समेत कराई छलफल का क्रम में तीन उद्भेद तथा दुर्व्यवहार का कारण रोकथाम का उपाय विपद का समय में इसलिए

0: तीन से तो सारा घट पड़ा हो तीन लाख ऋण ले लू तीन लाख से ढेर तीर्से को हम मन तीन करना पड़ी बात था
1: वो अपना तीन लाख रूपया ऋण ले रहा थी तीन लाख रूपया फिटा कैसे लगाती ऋण लेकर प्रोफेसर ब्यास तीन प्रतिमा तो अपना मन था वो उसके अपना सामो ब्यास तीन लाख रूपया से ढेर तीर करना थी
0: तो हम कर्ज करते पड़ रहा है और बहुत

0: देखो
1: यही के पास लगभग तीर्थ स्थान हो रेडियो मंडला एक कार्यक्रम जनहित को जारी संदेश
2: जो भी यहाँ ऐसा था कि जन रास्ता यहाँ सिटी पर

0: सुनसरी मतदान कार्यक्रम हिजो पूर्व माध्यम उनको दशमलव सात मेगाहर्ट्ज प्रत्येक सत्र को बुधवार और शनिवार प्रसारण होने गद कार्यक्रम बिहान साढ़े सात बजे प्रसारण होता है। आज को कार्यक्रम में हमी शिक्षा का कुरा कर नया शैक्षिक सत्र शुरू भई सके देश भर विद्यालय भर्ना अभियान संचालन भैर सब बाल बालिका को विद्यालय में पहुंच बढ़ाने उद्देश्य के स्थानीय तहले विभिन्न कार्यक्रम अगर पढ़ाई दिया। आज हम यही संदर्भ में कुराकानी करना काशी नगरपालिक शिक्षा शाखा प्रमुख तथा शिक्षा निर्देशक मन प्रसाद प्रेमी जी हम कार्यक्रम में लिया वहांसंग हम इन विषय में कुराकानी करना का लगी आज वहां हम स्टूडियो में आई सकू स्वागत
1: निश्चित रूप में इसमें शिक्षा मंत्रालय देखि शैक्षिक सत्र को बैशाख पंद्रह देखि शैक्षिक सत्र शुरू हो बैशाख पंद्रह देखि भर्ना अभियान चौदह महीना देखि भर्ना अभियान शुरूआत करने थी जिसका विभिन्न विद्यालय विभिन्न खाल कार्यक्रम बनाकर भर्ना अभियान विद्यालय में स्वागत करने विद्यालय में आएगी दिन पाठ्यपुस्तक

0: प्रतिबद्धता नागरिक स्वास्थ्य प्रति हामी प्रतिबद्धताप्रति वैज्ञानिक स्वास्थ्य सेवामा सर्वसुलभ रूपमा वृद्धि यहाँको स्वास्थ्य सेवामा आवश्यक परामर्शले कौशल्य अस्पताल भाँसकरीमा सम्पर्क गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दी
1: अस्पताल सेवा
0: 24 घण्टा डाक्टर के प्रत्यक्ष निगरानीमा उपचार गराए
1: प्रत्येक दिन बिहान 8 बजे से सन्ध्या 6 बजेसम्म विशेषज्ञ फिजिसियन डाक्टर से प्या छाती कलेजो नसा मुटु चेक जाँच गरिरहेछ
0: प्रत्येक दिन नसा तथा न्युरो सर्जरी हार्ट जोड्ने तथा जनरल सर्जरी प्रसुति सेवा नाकका घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टरद्वारा चेक जाँच गराए
1: 24 घण्टा डिजिटल एक्सरे भिडियो एक्सरे ईसीजी तथा इको मुटु एक्सरे सेवा उपलब्ध भयो सुविधा सम्पन्न ल्याब सेवा उपलब्ध भयो त्यसलाई शिशुको मुखबाट बिना नसा ढाकबैलक हातद्वारा अनि चल्न बिरामी मुखनकला फिजियोथेरापी तथा एकुपेन्टर थेरापी विधि बसे उपचार गरिरहेका
0: नसा ढाकबैलक बिरामी मुखनले बिना प्रेसनल फिजियोथेरापी तथा एकुपेन्टर थेरापी से सफल उपचार गर्दै
1: 24 घण्टा एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिएको भए असाध्य नागरिक एकल महिला अनाथ बालबालिका अपाङ्ग ज्येष्ठ नागरिक हुन सेवामा 10% छुटकी व्यवस्था गरिएको भए कोशीले अस्पताल प्रणाली बाँसकरी शाखा 5 बाँसकरी बर्दिया पुरान पेट्रोल पम्प दक्षिण पाजर
0: सम्पर्क फोन नम्बर 084400192 हो 084400210 बाँसकरी बर्दिया सँगसँगै फोन नम्बर 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

बढ़ने समय हो। लागू पदार्थ को एक पदक को प्रयोग पनि गैर मानसिक समस्या पढ़ाई में असर पुर्याउन सक्छ। साथी को दबाव में होइन आफ्नो सपना को पक्ष में निर्णय गरौं। तनाव भए खुला कुरा गरौं। समाधान लागू पदार्थ होइन, लागू पदार्थ बाट टाढा बसौं। स्वस्थ र

निशाना रोग नसेपछि सुस्त जीवन अपनाई, निशाना रोग जत्ता बनन, ध्यानी दिन जीवन खत्म हुई, संतुलित खाना खाई, व्यायाम

0: किया। सुप्रिया को महिला से आकर पाकर भारत सरकार उसका सफाई करी।
1: दिल्ली चुनाव महाप्रति का आदि बुताई मनमोहन ने फाकी
0: ब्रह्मविटर बड़ा बड़े काम नहीं करी।
1: मनमोहन सिंह ने खड़े करी से उस क्षेत्र में रहकर आदि मदर से बुटा के केंद्र छोड़ी।
0: सुक्का मौसम बनुआ आदि लड़ना प्रस्तुत सलाई लाइटर निकालने लगी।
1: बनुआ आदि लड़क देखा से लगभग वन कार्यालय सामुदायिक वन को प्रहरी खबर करी। सब कुछ सुरक्षित तरीका से आगे बुटाई।

0: बसे सुनकर पटकर आने लगा तो कहेगा इन हर ऐसी कभी उपाय में ध्यान दिया सुना सुन
1: लगता है पता मुझे बच रहा का स्टार्ट

0: ये तो सारे खाता पढ़ना हो, 3 लाख ऋण लेना हो, 3 लाख से ढेर तीर सैकड़ो अब मन तीन पड़ना परिवार का था।
1: और अपना 3 लाख रूपया ऋण ले रहा थी, 3 लाख रूपया फिटा कैसे लगा थी
0: अपना

0: तंदुरुस्त बनाए पूरा खाना संसद दुई बरस समय जारी करी
1: रेडियो स्वास्थ्य कार्यालय प्रत्याशी जनहित में जारी समय
2: किस्ता लिएको पर्दो रहेछ जस्तो लाग्छ। अर्को महिना आइसक्यो, भोलि त आउन थालिसके किस्ता

0: आधी संतुलित खाना खाई, व्यायाम शब्द करी, धूम्रपान मदिरा से दूर रही, तनाव नियंत्रण करी, आज निर्णय कांडिक जीवन अजराम निशा रोग से प्रति स्वस्थ जीवन अपनाई। रेडियो गुरुवार को सहकार्य में स्वास्थ्य कार्यालय बर्दिया ऐसी जनहित में जारी संदेश।
1: हरेक खेत लगे है छोरी छापे छाता पानी को बोतल में मैं जीवन जंतु मिसाउन भूले
2: मैं
0: मंत्रालय तथा रोग नियंत्रण महाशाखा राष्ट्रीय

प्रत्यान करना व्यवस्था करना स्वास्थ्य बीमा के इंतजाम चौहत्तर स्थानीय तहना स्वास्थ्य बीमा संयोजन समिति गठन संचालन का व्यवस्था करना एन अनुसार बारहपटिया ठाकुर बाबा उपासपुरी नगर पालिका तथा केवल गांव पालिका के स्थानीय तह स्वास्थ्य बीमा संयोजन समिति गठन तरह स्वास्थ्य बीमा पूर्ण जिला संपर्क कार्यालय प्रमुख दीपेन्द्र बहादुर विष्ट जानकारी महाकल पालिका का प्रमुख अध्यक्ष संयोजक नामेड़ का सात सदस्य स्वास्थ्य बीमा संयोजन समिति गठन कर चार स्थानीय तह में बीमा संयोजन समिति गठन कल से चार स्थानीय तह बाकी आज शनिचर विशेष महंगा अपना प्रश्न को सरकार पक्ष का जवाब लेखी आज हमारा बांसुरी नगर पालिका छरद चौधरी का फेसबुक में से प्रश्न लेकर बाटी वहां लेखर बाट सर्वोदय आदि विद्यालय का तुलना में कमजोर बढ़ती देता विद्यालय बेला बेला में चल खेल होना अनुपमान्य होना तथा पूरक बरस महत्व होना पैलाध्यार गांव का बाल बालिका पढ़ा आई विद्यालय में अब विद्यार्थी को संख्या कति बेलता या कर कारण व्यवस्थापन पक्ष का कमजोरी हो कि शिक्षक पक्ष का कमजोरी हो देख प्रश्न पूछे अपना प्रश्न का जवाब हमारा पासवरी नगर पालिका का शिक्षा शाखा प्रमुख मन प्रसाद लेखनी हमारा पूछल बाकी सुनिधा।

0: subdue under Kiryat Mah at Hari Kama Alakosya. So Dr. Sartan is cheating if he has a little bit of a plan to try and put an ambulance camera, put an adirman of Sero Kona, Jal the Hamos of the Kanti Mata of the Hari Kama. After this was a problem in the same.
1: हाथियों को बसाया तथा पैताल कंपनी लिमिटेड को वहां पर बंधक करने सरकारी पदों से राजीनामा देने बाट सरकार राज्य की नियुक्ति खारिज करना तैयारी कर भी लगत जाना है करीब पांच तीन साल का नैतिकता का आधार में राजीनामा देने लक्ष्मण चले गए सरकार सार्वजनिक पदाधिकारी का पद मुक्ति संबंधी विशेष व्यवस्था जारी 2083 बजे बड़ा संख्या में नियुक्त होते हैं प्रक्रिया का महल पास आचार्य स्वैच्छिक रूप में और छोड़ना चले गए कंपनी का एक उच्च अधिकारी के अनुसार वहां कृषि विभाग के कारण युवक बदलर का राजनीतिक परिस्थिति पूछकर राजीनामा दे रखे अधिकारी का कार्य शैली पर प्रशंसनीय रहा और संस्था का लागू योगदान महत्वपूर्ण रहा वो अधिकारी का कार्य रहा
0: राष्ट्रीय समाचार संघ हमारा संदेश का समय बुलाया हमारा संदेश लेना से पहला मुख्य मुख्य संदेश एक हरा पांचवें नंबर पालिका के कार्यालय नगर क्षेत्र में संचालन इनामी के तेल एक साथ आठ के तुले पदार्थ मसले चलना तीन पीने पावर के तौर पर तथा संचालन इजाजत से उन्हें सूचना कर बात और खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कंपनी लिमिटेड का महाप्रबंधक रमेश आचार्य पद्म से राजीनामा दिलवाकर अब हमारा संदेश आपका दिन 7 बजे नेपाली भाषा हमारा संदेश देखा नेपाली तब समग्र समाचार कक्ष का संकुशन प्राप्त संक्रिया गौरी शंकर चंद्रमा अनुप संग संक्रिया केन्द्र समय कुमार विधायक रेडियो प्रभाव।

शासन अभाव ने महिला सशक्तिकरण पालन करने का एक प्रसिद्ध थे घर में लेकर था दूध उत्पादन में कमी आने उच्च जोखिम उठाई और साथ जस्ते उच्च तापक्रम के कारण दूध उत्पादन करके आमदानी

0: गरी अन्न केरादिन साग सब्जी फलफूल सहित पोषण पूरक खानाले बच्चा अन्न तन्दुरुस्त भए पूरक खाना सँगसँग दुई वर्षसम्म स्तनपान जारी गरे।
1: सहकारी स्वास्थ्य कार्यालय प्रत्याशी जनहितमा जारी सन्देश।

सब चित्रालय समिति गरीब बजे आने और संबंधित डॉक्टर सुनील वागे को बनाई उपभोक्ता कानून नियंत्रण गर्न सरकारी परिस्थिति के देश पर विशेष अभियान संचालन करने सभी सरकार वाला स्वरण करने सरकार का आग्रह जलवायु निगरानी निकायले महासागरहरूको सतही तापक्रमको उच्च बिन्दुमा रहेको चेतावनी दियो। राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष र विज्ञपनमा नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान जारी तनावका विदेश मन्त्रीद्वारा कूटनीतिक तहर शुरू एक दिवसीय अभ्यास स्कटल्याण्ड दीप आकाश नियममा चाडबाडमा नेपालको एक दिवसीय दौडानले पराजित।

0: मंत्रालय का प्रवक्ता ने तो प्रस्ताव से विधेयक श्री अनिल चंद्र बता रहे हैं
1: कार्यालय ने आगामी आर्थिक वर्ष को नीति कार्यक्रम तथा बजट तर्जुमा करने

0: Então, simplesmente não consegui encontrar amigos na saia, quanto mais de leite, muito longo. Eu sei, amei periquito, tenho um colega que me amou, só para o mundo. Eu sei, amei, já não tenho que ter uma. Decidi que ando, essa vai ser com o que eu não sou, não tenho um tema. Dizem, olha que tipo, a minha de Lipania, a minha comunidade, então, uma pessoa, morreu, olha, uma tonta, não tenho um tema. अब वही पच्चीस साल में हम भाई उनसे कॉलेज वाली जब निवाली की तकाम वाली अलग बच्चा बच्चा ले लेते हैं निवाल बच्चे ने और उनका मेरे को मैच लेकिन समझा तो सही है या तो सही इसलिए कोई बेटी के वाली जा सके इसलिए भी हमें हर एक कला कर लेती है अपना जिम्मेदारी बहुत करेगा ची अभी सब और दिखा आपने बच्चा नहीं शब्द बोला उनका इच्छा बनी था बोलने से पहले गाना बस बोलते थे इच्छा में आउट नर्वस तब ही गाना बस बोलने से पहले
1: इसका मायने बस तो गाना बस बोलते हैं जब कोई भी लोग निकल रहा है तो इच्छा लो तो वही मैं बस आपको कोई एक उत्साह सुपर से देखना चाहिए

0: सांख्यों में उनको द्विघात शास्त्री लगातार करता है कि सांख्यों के लगे सिद्धांत का वही कहता है
1: हमारे पास में एक होता है सिद्धांत

तपाई सन्तरित खाना खाई व्यायाम शब्द गरी धुनु पान मदिना मसिने टुला रही तर भन नियन्त्रण गरी आज निर्णय कार्य जीवन अचार निशा रोग मसे भाँति स्वस्थ जीवन अपनाई।

0: ना कुछ आ रहा
1: है सर सर तेरे को तो इस चीज़ में कुछ कुछ नहीं लग पाएगा सर
0: तेरे को तो सर तेरे को देखिए तेरे में है ना तो सामने से जिस चीज़ में तेरे को अच्छी बॉय पड़ी सर ना तो मैंने इसको मैंने सोचा था ऊपर
1: सर ये बात सर

0: समयमा टिस्टा किरमा कति रहेछ भयङ्कर लघुवित्त संस्थान उपलब्ध जी सेक्लबाट टिकी ऋण पालेछ
1: जन्मदिन
2: वित्तीय संस्था से कर्जा ले